0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विनो और रेडियो
2: और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो